सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र मुकदस तीन की गोद आनंद मान है गुरु प्रसाद सिंह जी हो सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है।

कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाई।

परे तेरे पंडारा, जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला,

कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंढा साई जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हौ पाई रहाउ। सब तेरी तू सबने त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाता मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणै। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख परगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पई लेने वासा पानी पावक तिन है किया। पंकज मोह पाग नहीं चले हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हौ जति सती नहीं पड़या मूरख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा। पई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत भाज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ। जाप तप

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारो कम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पाए ओई।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड जाहे, पौ जल बिखम अस गाहौ गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोए न जाए। जे आवै तो दयाहे, सलोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतिया दरगह पाइए ठाओ, कहो नानक किरपा करे जिसनो ए वत दे। जग मह उत्तम काढ़ी है, विरले

सत्संग जी। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास गोदी पास चेत सुनीम प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई प्याय फिर अंकित कोटे अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए ते बहादुर सिमर है कर्ण हूं दया सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदार का त्यंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हड्डियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया बन छकिया दे चलाई ते वाहे दे कंजट किया जिन्हें प्यार सत्यार की कमाई का त्यंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लुहाइया चरखिया चढ़े आर नजर आए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसी देखे संसंग दिखाया तिना भी कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। भाजपा गुरुद्वारा का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाह नाम चिता है जित आवन का सदका सर्व सुख है जहां जहां गुरु खालसा जी साहब का चरियाए देखते कि फतेह बिंद की पैज पंथकी जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी

गुरु दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर गीता के करते का हो विचार तत कर बाप सुहला शिव रस सुन हाल तुम बाप मगन पाव का सुहला पाव बारी जित सुहला सदा सुख हो रहा नित नित जीड़े समाली न देखे ग देव नहार दीना दन के मत ना पवे तिस दाते कबर शुमार संबत शाह लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजन आशीष दिया जो हो बसा विश मेल कर करे पहुंचा सदर नित भवन सदन हार सिमरिय नानक से दे आवन राग समहला पहला श्री कर श्री गुरु श्री उपदेश गुरु गुरु कविश्ने के बाबा जय कर कर ते की तो शो कर राग बनाई तुय रहा विश्वे चशिया कनिया पहदा तिथि वाणी माहो हुआ सूर्य गुरु तेक नानक करते किते वेश राग तना श्री महला पहला गगन में थाल राव चंद्र दीप कबने थाल का मंडल दिन कुमती धूप मल्यान लो पवन चबलो करी शकल पनराय फुलंत ज्योति कैसी आरती होई पवखन न तेरी आरती न हत शब्द वाज अंत बेरी रहा सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नन एक तोहे सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध जल तब मोहे सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए गुरु साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत स्वभाव है स्वरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंतिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक शरण को होए जाते तेरे नए वर्षा राग उड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखित लिखे गुरु पाया मन हर लिप मंडल मंडा हे कर साधु दिलीप नड्डा हे कर डंडा उत्पन्न वड्डा हे दुहा शाकत हर साधन जाने तिरंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुबत पाव जम काल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण पुर खंडा हे बनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह मंडा हे हम गरीब मुश्किल प्रभ तेरे हर रात रात बन वड्डा हे दिन नानक नाम दा टेक है हर नाम ही सुख मंडा हे दा गोड़ी पुर भी महला पनवा तो दो बिनती सुनो मेरे बीता संत ठहल के बेला यहाँ खाट चलो हर लहा गव संसहेदा औद कटे दिन सन नारी मन गुरु मिल काज सवर रहा ए हो संसार विकासों से मैं तलो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पिया एहो दर्श कथ कथा तिन जानी जाको आई सोई बिहार जो हर गुरु ते मन बसेदा निज कर महल बाबू सुख सहजे बहुत न हो गुफेरा।

वै नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ काल कलेश तन माहे मिटावौ सिमरौ जास विसंबर एकै नाम जपता गंत अनेकै वेद प्राण सिमरत सुदाख्यर किन्ने राम नाम इक आख्यर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी नयावै कांखी एकै दर्श तुहारू नानक उन संग मुहे उदारू सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ नाम बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदा नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जब तब पूजा प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिने आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहि समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से तनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरै से जन परवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन अनध कनेरे प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अंदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरै से जन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयु नानक के प्रभ साथ अष्टपति जय मात पिता सुत मीत न पाई मानुहा नाम तेरे संग सहाई जय महा प्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हो वै अत भारी हर को नाम किन माए उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिक न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार ग्यो जात इकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याग्य
नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कूट लकबाई, नाम जपत है पार पराई, अनिक बिघन जय आय सिंगार है, हर का नाम तत्काल उदार है, अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कबू न तू वै, हर का नाम कूट पाप कुवै, सा नाम जपू मन रंग, नानक पाई है साध कै संग, जे मार के गन जाए न कोसा,

पचानू जय महाभियान तपत भोकाम तय हर के नाम की तुम ऊपर छाम जा त्रिका मन तुझ आ कर कह तय नानक हर हर अमृत बर कह भक्त जना की बरतन नाम संत जना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर

विरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परै न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर धन जन कुआ प्रभु दीना हर हर जन कै ऊट सतानी हर प्रताप जन अवर न जान यूत भोजन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत ऋतवसै संत प्रताप दुर्ग सब नसै संत का संग विडभागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर न हुए नानक गुरमुख नाम पावै जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूज सनाई हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदि जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विज्ञान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगुण त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती व्रत नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव महा उदास तुपीश्वर थी वै गुण माय होमत प्राण कनिकसव है वर भूम दान न्यौली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम मत साधन निमख निम कर शरीर कटावे ताओ पीहो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कचनाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीरथ दे छुट्टै गर्भ गुमान मन ते हुट्टै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिकिया टरे जल तो है बहु देह नीत शुद्ध काओ एकाची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत सियान पजम का पाव व्यापै अनेक जतन कर त्रिसन्ना त्रापै भेख अनेक गनी बुझै कूट पाव दरगनी सिजै झूठ सुनाई उपयाल मुहि व्यापै माया जाल अवर कर तू सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जी को मांगे साजना की सेवा लागे जी को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सुध गावे जी को अपनी शोभा लूरे सा संगे होमे चूरे जी को जन मरण ते डरे साजना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रदान सा समझा का मिटा अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते उच्चा जाका मन सगल किरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना फेख है सगल सिर साजना सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पापुन हिलेपा निर्धन को तन तेरो नाव निथावे को नाव तेरा ताओ निमाने को प्रभ तेरो मानो सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानू आपे अपन संगा प्रभराते तुमरी उष्ट तुम ते हुए नानक और न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपू जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसु रसन बकानी सगल तान ते उत्तमता नानक जी कट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार यानिया सो प्रभ सदा सुमालो जिनकी अति चीत रख नानक निभि नाल अष्टपदि रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सा सुवार सी गारिया गर भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरध पया उपर साख सैन मुख पया बैठ को दैन एव निर्गुण गुण कछु न बुझ जय बख्श ले हो तो नानक सी जय
जे प्रसाद तारूपर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पवन पव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग सात बसादी ने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्यागवर संरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नानक काढ़ लियो प्रभ आपे आदंत जो रख नहार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निद पावै तास्यो मूढ़ा मन हिलावै जो ठाकुर सतसदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दर गह मार तिसे विसारै मुगद जान सदा सदैव भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मैं पथत विकराल नानक काढ़ लिहो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर भेक अंतर मल माया छपसनाय कच करै छिपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अग्न बार तनु स्वाहा गल पात्र कैसे त्रय अथाह जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुने अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहलि हो ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कही है तो समझै पूरा कहाँ विष्ण पद गावै गुंग जतन करै तौ पी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुआवै न चीत जो बैराई तस्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरुद्ध काम क्रुद मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह हे आहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहु।

तुमरी कृपा में सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हो सुआज्ञाकारी, तुमरी गात में

नानकउ नसी जई बिन नावे पत जाय। स्वदी दस वस्तु ले पाछे पावे, एक बस कारण बिखोट गवावे। एक भी ना दे दस भी हिर ले, तो मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर से ना ही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा। जा कै मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व तोग नानक तिन पाया। अगंत सब अपनी देरास, खास पीत बरते अन दुलास। अपनी अमान कछ बहुर साव ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी परती ताप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्तु से आज्ञा रखे, प्रभ की आज्ञा मान मत है। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हित, सर पर होवत जान अनित। बिर की छाया सो रंग लावे, ओ बिन सो मन पछतावे। जो दिसे सो चल नहार, लपट रो ते अंध अंधार। बटाओ सो जो लावे नेहि, ताकू हाथ न आवे के। मन हर के नाम की भी सुखदाई, कर कृपा नानका भले लाई। मिथ्या तन धन कुटम सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जीवन धनवाल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया भीख हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को ही रह। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन्ने पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कह हो सूचा। बिरता नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन ब्रता बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन ब्रथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जी कट बस्यो, हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मानी प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू पी। नवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन मैं मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, किसकी सीख तरह संसार। जो तुम पानी तिन प्रभ जाता, नानक जन चरण पर आता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पहमाने। आप है आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव से आन सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस भाव है तिसले लड़लाई, थान थनंत रहा सुमाय। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहंगमेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि। जे प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकुर कौरक मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावह, तिसको सिमरत परम गत पावह। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे त्याहि सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह, तिसे त्या कतवर लुभावह। जे प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पैरता का जस गावी। जय जय प्रसाद तु सब को मान, मुखता को जस रसन बखान। ये प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दर गह मान पावह, नानक पत चेती कर जावह। जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिब लावो तिस राम सनेही। ये प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावह हर हर जस कहत। जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभता कह। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आपूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद अश्व हस्त सुवारी, मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना, राख प्रभु अपने मना।
जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठ सत सह त्याई, तिसह त्याई जो एक अलख है इहां उहां, नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका त्यार। जेह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ कौ सा चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तिरनी की जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने कर्ण नाद, जे प्रसाद पेखै विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जी बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सह समाव है। ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर्त तुता को जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्योराच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मतु तम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी माया, प्रभु कछु न किन्हू लया। जित जित लावो तित लगै हर नाथ, नानक किन कह कछु नहात। श्लोक अगमगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साजना के चर्ज कथाष्टपदी। साधक संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साधक संग मिटे अभिमान, साधक संग प्रगटै सुज्ञान। साधक संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहि समानी। साधक संग गोचर मिलै, साधक संग सदा प्रफुल्लै। साधक संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सब की रेन, साधक संग मनोहर बैन। साधक संग न कतु तावै, साध संग स्थित मन पावै। साधक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सु प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साधक संग न बीगा पैर। साधक संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साधक संग नाही होताप, साधक संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबहु तावै, साधक संग सदा सुख पावै। साध संग दस्त गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साधक संग बसै थान उच्चै, साधु कै संग महल पहुँचै। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उदारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्व थान गामु, नानक साधक संग सफल जनामु। साधक संग नाही कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधक संग कलुकत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद वसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साधक संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगै परम मीठा, साधु कै संकट कट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जान है, जिता सुनै तेता बख्यान। साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते उच्ची, साध की शोभा मूच ते मुची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै जिस बिन कोए। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी।
ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीरजेत ज्यों बसदा को खुद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जो पाव का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगाश जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा मने अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर भया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयासो ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाशो, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुई सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी सम सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सदजागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उतार है जो अंतरनाम सर्व में पेख है भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको पर सगल निस्तार है अष्टपति मिथ्या नाही रसना परसु मन में प्रीत निरंजन दर्शु पर त्रैरूप न पेख है नित्र साध की टैल संसंग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की वासना मन ते टर इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानकोट मध्य को ऐसा परस वैष्णु सोजी सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह ने कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावे नानको वैष्णु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सगला परम कर पूजय सगल पार ब्रह्म सासुन पापा मलक होवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तने अर्पे विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रभु तै राम नामा तुम मैं सोते राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उदय जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नयावे वेद प्राण सिमरत बुझै मूल सुखम मैं जानहि अस्थूल चौवर्ण को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर्ण में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सा सुन पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतार है पस प्रेत मुद पात्र को तार है सर्व लोक का उकद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काउ जुगत कितै न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सतराम दास
ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸਨ ਦਿਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਭਾਈ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗਤ ਮੂ ਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਤਮਿਤਾ ਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਾ ਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿੰਨ ਆਓ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਅਣਤ ਤਰੰਗ ਲਕੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਧਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਵਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਤਿਆ ਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭੇਗਾ ਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਭ ਕੋਹਿਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਤਿਤ ਲਾਓ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਬਿਖ ਨਿਪਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵਦਾਨ ਮਿੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜ ਸਤਾਮ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੋਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਰ ਲੈ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਵੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਕਿਨ ਨਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ ਆਤਮ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੂਤ ਗਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰੇ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦੈ ਕੇ ਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਆਏ ਸਮਾਤਾ ਕੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪੈ ਸਤ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮਰਾ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੁਮਾਵੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੇ ਕਹਿ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਜਲ ਤਲ ਵਹੀਲ ਸੋਹਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋ ਕਿਨ ਮੈਂ ਥਪ ਥਪ ਨਹਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਰ ਰਹਾ ਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤਿਰਾਕੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ ਦੂਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਵਿਖਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਵਰ ਨਾ ਆਵੈ ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣਾ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦੈ ਦਿਸਤਾਵੈ ਨਿਮਕ ਮਾਇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿਆ ਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ
किन मैं नीच कीट को राज उपार ब्रह्म गरीब निवाजा का दृष्ट कछु नयावै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जा को अपनी करे बख्शीश ता का लेखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रासु घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगासु अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल ना ही सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्योत भावे सोई फुनथियो कब हूँ ऊंच नीच मह बसै कब हूँ सोग हरख रंग हसै कब हूँ निंद छिंद व्यवहार कब हूँ बकाश बयाल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानका मिला बनहार कब हूँ नृत्य करे बपात कब हूँ सोए रह दिन रात कब हूँ माँ क्रोध विकराल कब हूँ सर्व की हो तरवाल कब हूँ हुए बह बड़ राजा कब हूँ पेकारी नीच का साजा कब हूँ अप कीरत मह आवै कब हूँ भला भला कहावै ज्यों प्रभरा कहते भी रह गुर प्रसाद नानक सच कहे कब हूँ हुए पंडित करे बख्यान कब हूँ मोन धारी लावै ध्यान कब हूँ तट तीर्थ स्नान कब हूँ सिर साधिक मुख ज्ञान कब हूँ कीट हस्त पतंग हुए जिया नक जुन पर मैं परमिया नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावै ज्यो प्रभावै तिवै नचावै ज्यो तिसभावै सोई हुए नानक दूजा वरना कोई कब हूँ सा संगत उपावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रतिक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल मैं जल आई कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट के गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आय आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावै जिन मरै बो जुन परमावै धन कुम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानकी हां मुक्ता गै सुख पावै धनवंता हुए कर गर भावै तिन समान का संग न जावै बोल उस कर्मा अनुकूपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावै सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नर्क सुर्ख फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म निद्रवै हर दर गह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन होए कहु नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नीच नाही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सुजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक कहो छूटै सहस कटे लकूट तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग बिकिया के करै न तृप्तावै कप कमरै बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोरथ बिरते सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचारु जैसे दिष्ट करे तैसा हुए आपे आपा प्रभ सोए जो किछ कीनु सो अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग पूजै देखे करै विवेक अपहे का पहे अनेक मरै न बिनसै आवै न जाय नानक सदी रहया समाय आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछ उसका करण हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौतुक कर रंग आपार मन मै अमन अपने माहि नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी सच सच सत सब कीना कूट मजे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुख नार जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए
संत कह दुखन नरक मैं पाए, संत कह दुखन मत होए मलीन, संत कह दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै न कोई, संत कह दुखन तान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कह दुखन काग ज्यों लवै, संतन कह दुखन सर्फ ज्योन पाए, संत कह दुखन त्रिगत ज्योन करमाए, संतन कह दुखन तृष्णा मैं चलै, संत कह दुखन सब को छलै, संत कह दुखन ते सब जाए, संत कह दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाए, नान संत पावे तोय पीगत पाहे, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक किंटिक न पाई, संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत के निंदा दुख में दोख, नानक संत पाव है तंसका भी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित्र, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म में रहे, संत के दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पाव है ताले मिलाए, संत का दुखी अद भी ते टूटे, संत का दुखी कितने काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोता, जो सास बिना मृतक की लोता, संत के दुखी की जड़ किच नाहे, अपन बीजा पे ही खाही, संत के दुखी गवर्न रखनहार, नानक संत पावै ता लेयो बहार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहुन मछरी तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, जो पावक इंद्र नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों गुआड़ तिलके तुमाही दुहेला, संत का दुखी धर्म तिरैत, संत का दुखी सद मिथ्या कैत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरै न जीवाई है, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई हुए, पया किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, सब घट तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की औसत करो दिन रात, सत्याव सास की रात, सब कछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना के लाभ करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिसा पर नाम देवड भागी, नानक जन से श्लोक, तज हो से आनप सुरजन हो, सिमरो हर हर राए, एकास हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुक की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक कै भगवान, जिस कह दिया रह अगाए, बहुत न दृष्ण लग गया, मारा रखे को आप, मानुक है किस नाही हाथ, तिसका हुकुम भूसु कोए, तिसका नाम रखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिगन लाग गए कोए, सत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनु पेक ठाकुर का रंग, सासंग विनसै सत्संग, चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानकू जल मत्था, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदार के गुण गाहे, राम नाम जो करै विचारु, से तनवंत गणी संसारु, मन तनमुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानु ते सुखी, एको एक एक पछानै, तुत की उसो जी जानै, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिनै निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानू तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, अंदिन कीर्तन, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रूप त्यो हर जन रहत, अंदिन कीर्तन केवल बकियान, ग्रिष्मै सोई निर्वार, एक ऊपर जे जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं दुलावै, जिस पर वे अपना कृपा करै, सो सेवक को किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद सब बुझिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न कि जन्म न किच मरै, अपन चलता भी करै, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्टि, आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुग त्रष्टा प्रताप, अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धारहु ब्रह्मांड, अलख अभय पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभु जाता सुसु पावंत, सगल संसार उधरै तिन मंत्र,
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਭ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਿਟਭਾਗੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸ਼ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖੋ ਤੁਮ ਕਰਮਾਲ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਈ, ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਮਾਇ ਸਮਾਇ, ਹੋਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਉਨਹੂ ਬਣੇ ਆਏ ਆਪ ਸੁ ਆਪ ਦੀਨ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਣ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਕਰ ਨਾਮ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਭ ਹੈ, ਜਾ ਸਭ ਕੀ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬ ਹੈ, ਅਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ, ਜਿਉ ਪਾਖਾਨਾ ਚੜਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਨਗਤ ਨਿਸ਼ਤਰੈ, ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਬੇਗਾਸ, ਜਿਉ ਮਾਉ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਮਨ ਮੂਰ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ, ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਜਾਨ, ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਤੀ ਘਰ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਤਜ ਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੂਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੂ, ਲਾਦ ਕੇ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖੂ ਜਲ ਹਰ ਦਰ ਕਹਿ ਸੋਏ, ਓ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਸੁਧ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਬ ਸਾਧਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ, ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤਾ ਦਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਉ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਨਿਰਮਲ ਏ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨੇ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗ ਸੁਨਿਐ ਤਿਹਲੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਹੋਏ, ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਚੀ ਦਿਰ ਸਚਾ ਆਕਾਰ, ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਹੈ ਨਰਾਉ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨਿਤ੍ਰ ਪੂਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ, ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਜਾ ਕੈ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕੈ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜੂਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਬ ਮੈਂ ਤਪੇਸ਼ਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪੁਰੋਈ ਆਪਣੈ ਸੂਤ, ਸਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ, ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ, ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਵਿਰਿਆ ਵੈ ਜਾਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਵਿਧ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ,
नाना चलत करे किन माहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुख समाहि सुमाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए किसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कै हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कोई नाम जपता की गत हुए आप सत किया सब सत अपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करण हार वर्ण बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योत सुपावे सो वर्तिया विस्मन विस्म भय विस्मा जिन बूझे तसाया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे हुए दाते दुख कट नहार जाकै संग तरह संसार जन का सेवक सोवट भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझन हार कु सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जा कै हृदय विश्वास प्रभु आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निर्भउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहि समाना बस्त माहि ले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई बूझै बूझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जानै संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालनहारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख है ताकि गत मित कोई न लाख है प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक कुछ दे उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख है भस्म कर लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काटता पोता को राख देख कर हाथ मानस जतन करत वह पात जिसके करत विरते जात मारण राख अवर न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रबल कविडानी बार बार बार प्रभु जपी है पी मृत्यु मन तंत्र पी है ना मृतन जिन गुरमुख पाया इसकी चवर नाही दृष्टाया नाम तन नम रूप रंग नम सुखर नाम का संग नाम रजो जंत्रिपताने मंत्र नाम मैं नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सतकाम बोलो जह जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की नी दात करै भगता तुम कह चाय प्रभ अपने शिव रह सुमाए जो आहुवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने इसकी महिमा कौन बखानू जिसका गुण कहे।

नाम हरवत यो तन संचो भगवंत। संत जना का निर्मल मंत एकास राखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठतावै सो तनु हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत। जिस सोभा को करह भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी।

हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन प्रबुद्ध हर कह नाई दै जिस तावता बैठाई ताकू बिघन न लागे कुए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूरन हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम्पासी तत् विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचू काचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार।

मन लाई। मन बांचत मन बंचत नानक फल पाए। संग ना चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार। आसु हस्ती रथ सुवारी झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन बाहे जन्म जन्म के किल बिख जाए। आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो। सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानु गुन गाओ। गुण गाव तेरी त्रस मैल बिन सुजाए हो मैं बिक फैल। हो हे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास सरनाम समाल। छाट सियान सगली मना साध संग पावे सच तना। हर पूंजी सच करु बिहार यहां सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे। किसके गुण गाव अनंत मंत्र जाप एक भगवंत। एको एक हर आप पूर्ण पूरे हो प्रभ्याप।

फिर जाप अष्टपदी जब अकार कचन दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी आप

वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सो कहो किस व्यापत। जब अपने आपा पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम। अपन केला वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत पर केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को बनी। जब एक हर अगम पार, तब नरक सुर कौ कौन अवतारू। जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत धरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। अपन चल तब करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन्म मरण कौ कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जमकी त्रास कहो किस होए। जब अविगत गोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाते, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाते। अपन आपा पिय चर्जा, नानक अपन रूप आपिय प्रजा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तय बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय चल चिदर लगत को कीश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तय किसे भू कवन तृप्तावै। करण करावन करने हारु, नानक करते का नहीं सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बा मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पैपर बीन, तय वेद कतेव कहा को चीन। जब अपन आपा पुरतार है, तो सगन अपसगन कहा विचार है। जय अपन ऊचापन अपनेरा, तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्मर

अन दिन पूजै गुर के पैर। ए लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभे आपै मेले। साध संग मिल करहु आनंद, गुण गावहु प्रभ परमानंद। राम नाम तत करहु विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत बचनर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पहर प्रभु नीरा, मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा। सुनो उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दुएले हो सुवार, राम नाम अंतर उतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिसाच परिखिया। मंत्र नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच वापार करहो वापारी, दर गहन बह के तुम्हारी। एका टेक रखो मन बाहे, नानक बहुर नया बह जाहे। तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरै रखन हार त्याए। निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न

अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान,

कह न जाई चर्ज बिस्माद, तिन देखिया जिसे आप दिखाई, नानक तिस जन सूझी पाई, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत, तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे, तिस्ते भिन्न नहीं कोठाऊ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमृत मह देख, सस्यर सूर नक्षत्र में एक, बाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कब हूं डोले।

नाम संग्रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एकंकार अनिक कला लखी नह जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व

आपन जस आप ही सुना, आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कह मद अलिप्त रहे, जो किछ कहना सुआपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए, इस्ते हुए सुना ही बुरा, और कहो किने कछ करा, आप भला कर तू तत्निकी, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, पूत पूत अपन संगराच, ताकि गतमित कही न जाए, दूसर हुए तो सोजी पाए, तिसका

जी का है आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कला लेह रतन सुनत कमावत होत उदार। आप करे लोक कै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द नाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे शरण।

वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ता की गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बकाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपरा शासन मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्त करम प्रपाए सात शरण नानक ते आए जिस

कृपाल उदार है। निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि सुमानी। दुख रोग बिन से पै परमु, साध नाम निर्मलता के कर्म। सब

सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अभेव आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पूर्ण काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हु नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानही जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब तात मात न जात जाकर जनम मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानही पुरतीन लोक चौदह के बिख जग जापही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्विश्व रच्यो स्वयं भव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सरपंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वघंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाकत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार छंद द्वा प्रसाद गुणगण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपौ प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु शाहान शाह राजान राज पानान पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग अपा अपंग गतमित अपार गुणगण उदार मुनगण प्रणाम निरपहन काम आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाडे अंडंड बाडे चाचरी छंद त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रथिसय अधिसय अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वा प्रसाद कथते के अशेज देसै के अभेज भेसै के अगंज कर्मै के अपंज भरमै के अभेज लोकै के अदित सोकै के अवतूत वर्णै के बेभूत करणै के राजन प्रभाह के धर्मं तुजा है के आशोक वर्णै के सर्वा अपर्णै के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रिय है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपौ अनुपै के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बेहीने के एक अधीने के रोजी रजा कह रही मेरे हाक है के पाक ब्याब है के गैबुल गैब है के अफुल गुनाह है के साहन शाह है के कारण कनिंद है के रोजी दहंद है के राज कर रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र बाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
के सर्वंकल

मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तो सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी।

सवारी संगत जी वड्यां भागां वाले हो जुड़ बैठे हो आओ प्यार सहत सतगुरु महाराज जी नूं सीस चुका के दोवें हथ जोड़ के गुरु फतेह नाल सांझ पाईए जी रसना द्वारे आखो जी वाहिगुरु।

प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई धार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी पत मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संतां धूरी सोरठ महला पंजवां गुरपूरा नमस्कारे प्रभ सबे काज सवारे हरे अपनी कृपा धारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को भयो सहाई सगल मनोरथ कीने करतै ऊनी बात न काई रहाओ।

बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विदाता रहाउ नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेव न बिरथी जासी, अनद कर है तेरे दासा, जप पूरन होई आसा। सोरठ महल्ला पंजवा, गुरे अपने बलिहारी, जिन पूरन पैज सवारी, मन चिंदिया फल पाया, प्रभ अपना सदा त्याया, संत हो तिस बिन अवर न कोई, करण कारण प्रभ सोई रहाओ, प्रभ अपने वर दीने, सगल जी वस कीने, जन नानक नाम त्याया, ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महल्ला पंजवा, ताप गवाया गुरपूरे, वाजे अनहद तूरे, सर्ब कल्याण प्रभ कीने, कर किरपा आप दीने, बेदन सदगुर आप गवाई, सिख संत सब सर से हुए, हर हर नाम त्याई रहाओ, जो मंग है सो ले वह, प्रभ अपने संतां दे वह, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुपाखिया। सोरठ महल्ला पंजवा, सोई कराए जो तुद पावै, मोहे सियाणप कछु न आवै, हम बारिक

मिल साध संग हर त्याया, आठ पहर आराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया। रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श सुमावे, नानक दास सच्चे गुण गावे। सोरठ महला पंजवा, गुर मिल प्रभु चितारिया, कार्य

रहाओ करतब सब सुवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद

ला ठाकर हाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभ हुआ सदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की सब जी भये कृपाला रहाउ प्रभ करण कारण सुमराथा हर सिमरत सब दुख लाथा अपने दास की सुनी बेनंती सब नानक सुख सवंती सोरठ महला पंजवां अपना गुरु ते आए मिल कुशल सेती कर आए ना मैं की वडियाई तिस कीमत कहन न जाई संतो हर हर हर आराधो हर आराध सब किछ पाई कार्ज सगले साध हो रहाओ प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वट भागी जन नानक नाम ते आया तिन सर्ब सुखा।

गुरपूरे एह गल सारी हर हर नाम संतन की ओटा जो सिमरै तिसकी गत होवै उधरह सगले कोटा रहाओ संत संग जस गाया इह पूरन हर धन पाया कहो नानक आप मिटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया सोरठ महला पंजवा गुरपूरै पूरी कीनी बख्स अपनी कर दीनी नित आनंद सुख पाया थाव सगले सुखी वसाया हर की

सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकि सरनी पाई दर्शन भेटत होत आनंदा दुख गया हर गाइय हर रस पी बहु पाई नाम जपहु नाम आराधो गुरपूरे की शरणाई रहाउ तिसह प्राप्त।

आठ पहर तुम त्याई रहा। जो जन भजन करे प्रभ तेरा, किसे अंदेशा नाही, सतगुर चरण लगे।

रहाउ कर साध संगत सिमर माधु होहे पतत पुनीत। काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल पुन तोहे ग्रस है समझ राख।

दूत रथ संपत धन पूरन सब मही अवर सगल मिथिया ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं।

सगल जगत है जैसे सुपना, बिन सत लगत न बार रहाओ, बारू पीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार। तैसे ही एह सुख माया के, पुरज्यो कहा गवार। अजहू समझ कछ बिगरियो नाहन, भजले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन कौ, भाख्यो तुहे पुकार। सोरठ महला नौवा, एह जग मीत न देखियो कोई, सगल जगत अपने।

पुरज रहो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहो अचेत न चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी कहो नानक हर बिरद पछानो भूले सदा परानी सोरठ महला नौवा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया ने।

अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम न पाई सुन समाद महापरमार्थ तीन भवन पत नामं मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पह मानं आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथै का क्या कथिय भाई चालू सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत हुवै निगुरे मत न काई ज्यों चलाए त्यों चल है भाई और क्या को करे चुतराई एक परम भुलाए एक भक्ति राते तेरा खेल अपारा जित तुत लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे किच हुवै अपना जियो पिंड तुम्हारा सेवा करी जे किच हुवै अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम अधारा गगनंतर वासिया गुण परगासिया गुण मह ज्ञान त्यान नाम मन भावै कह कहावै तत्तो तत्व खान शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सहज सुभागी

जितने भी गुरु सिख माई भाई हाजिर बैठे हो, सारे सतगुरु दे बचना नाल सांझ पाइए। गुरु नानक दी तीसरी जोत धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे ए बुखार बिन तो निकले हुए मिठे वचन हन। साहब ने यही समझाया, मरना केड़ा सफल है, संसार तो जाना केड़ा सफल है ते केड़ा सफल नहीं। उंज ते दुनिया पता नहीं रोज किन्नी जा रही है, रोज आ रही है, उहदे विच किन्ने क जीव होणगे जिहड़ी अपनी यात्रा सफल करके जांदे होणगे। ते एक ऐसी ओ बख्शिश गुरु दी जिहड़ी मोहर है, उस मोहर नू लेके यात्रा उस जीव दी सफल हुंदी है। ते सतगुरु कहिंदे ने फिर सफल सफल सफल पई यात्रा। आपां बहुते वचन नहीं करने, बाणी द्वारा सतगुरु दे वचना द्वारा जितने भी हाजिर बैठे हो, मैं बेनती करूंगा सारे हाजरियां लो आइए, बस साड़ी हाजरी यही है सत्संग, ताकि ये याद जड़ी है धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह माता गुजर कौर जी चारे साहिबजादे, बस ये अरदास करके जाया जे दाता हिरदे विच ए तेरियां यादां बनियां रहन, ते जे यादां कायम रहन गियां बनियां रहन गियां ते मैं समझदा शायद सारे आउण वाले साल विच शायद ये जीवन किते वो यादां बदल के रख देन, ये जीवन बदल के रख देन, कोई क्रांति लै आवे ये यादां, ऐसी स्पिरिट सतगुरु साडे अंदर भी भर देवे, जिहड़ी स्पिरिट साहिबजादियां दे अंदर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने आप कुट कुट के भरी। गुरु अमरदास पातशाह जी दे ए मिठे वचन जितने भी बैठे हो, मैं बेनती करांगा सारे हाजरियां लो।

Kotan. Kotan Kot Tanwar Sahib Sri Guru Granth Sahib Padshah Ji Da. Kotan Kot Tanwar Aap Sariyan Sangtan Da Shahidi Dihade Manande Hoye Tan Sri Guru Granth Sahib Padshah Ji Di Charan Shan Sho Prapt Kar Rahe Ho Bhagan Wale Ho Guru Mehar Karan दस्य हुए सतगुरां दे मारक दे सतगुरु सानू भी ये शक्ति प्रदान करे कि गुरु दे चले दस्य हुए मारक दे सी चल सकी अपना जीवन सफल कर सकी साडे उस्ताद जी प्रोफेसर रणजीत सिंह जी संगत विच हाजरियां भर रहे ने धन्यवाद जी आया नु दास कलो होइयां भुलां दी खिमा सारियां दा धन्यवाद गुरु दी फतेह सारे गज के बुलाया जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु

0: सतगुरु जी दी पावन पवित्र तनगी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्रसाद संगत जीओ प्यार सहित आसीस बख्शिश करते हैं, एकाग्रता बख्शिश करते हैं, गुरु की बख्शिश गुरु फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख लिप्त नहीं आवे। आओ उस महान बख्शिश जिहड़ी सानू कीर्तन दे रूप मालिक ने बख्शिश कीती है प्राप्त करन लई, उस रस नू माणन दे लई जिहड़ा रस तुसी रोजाना ही अपने उस पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब तो दूर बैठे टीवी राही श्रवण करते हो कि यो महसूस करते हो कि असी धन गुरु रामदास पिता की गोद श्री दरबार साहब विखे बैठे हुए हैं। उसी आनंद विच आपां ने जुड़ के इत्थे कीर्तन करना है, तुसी सारे ने नाल नाल सहयोग बख्शिश करना है, रल के कीर्तन करना है, सारे ने नाल नाल रसना की हाजरी भी लवानी है। गुरु बख्शिश करे, कृपा करे। आओ गुरु रामदास पातशाह जी कृपा करन, आप अपना मेरा पर हथ रख के रसना ते बैठ के अपने इस कीर्तन की सेवा लैन। कुछ मिनटा लिया और रल के वाहगुरु का सिमरन करिए, उस तो उपरंत आपकी शब्द श्रवण करोगे। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम।

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी पावन पवित्र मुकद्दस तीन की गोद्युत आनंद मान है गुरु प्रसाद संगत जी सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है। आज संध्या वेले दे इन विशेष गुरमुख समागम विच आप जी की गुरबाणी कीर्तन रही सेवा करने का सुभाग आप जी के दर्शन करने का सतगुरु जी ने एक अवसर बख्शिश किया है। बाणी का कथन है, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। यह कीर्तन की महानता, यह कीर्तन की वड्याई। जिहड़े सचमुच अंदरों गुरु शब्द दे नाल जुड़ के गुरु नानक दे उस महान बख्शिश कीते कीर्तन का आनंद माणदे हन, वो कीर्तन जिहड़ा तुसी रोज सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जी तो दूर बैठे सरवण करते हो। मैं ये हर थां बेनती करदा कि भावें गुरु रामदास जी नूं प्यार करन वाला, उस दर नूं प्यार करन वाला शरीरक तौर ते हजारां किलोमीटर दूर बैठा होवे, पर जदों उस दर दे दर्शन हुंदे हन, उत्थों प्रसारित हुंदे कीर्तन दी धुनी कन्नां विच पैंदी है, ते उस लई इउं नहीं लगता कि असीं दूर बैठे कीर्तन सुन रहे हां। उस लई इउं लगता है कि धन गुरु रामदास पिता दी गोद श्री दरबार साहिब विखे बैठे हुए हैं। यह बख्शिश है उस दर दी, उस घर दी। डिठे सबे थाव नहीं तुत जिहिया, बदो पुरख बिदाते तातु सोहिया। वसदी सगन अपार अनूप रामदास सुर, हर हा नानक कस मल जाए नाय रामदास सुर। तन तन रामदास गुर जिन सिर यात्रे सवार। आओ सारे ने रल के कीर्तन करना है। जिथे तुसी कन्ना दे नाल बाणी नूं सरवण करना है, उथे नाल कोशिश करनी है साडी रचना दी भी हाजरी लगे, साडी रचना भी निर्मल ते सुची होई गुरु दे शब्द नाल, उस वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल। इसलिए सारे रल के आपां कीर्तन करिए। अगला शब्द आप जी श्रवण करोगे, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम अवखद मुख देवे काटे जम की फंदा। करो कृपा सारी।

आद जुगाद भगतन का राखा उस तत्कार कर जीवा। आप जी ये शब्द श्रवण कार्य से पावे समा हो चुका है, पर प्रबंधक वीरा वालों हुक्म है से कि थोड़ा जा होर ऊपर लालन समत से संगत विराजमान होएगी, बैठी होएगी। आओ एक शब्द होर पढ़ के उस तो परंतु समाप्त करेंगे जी। समरथ गुरु सिर हाथ तरियो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो। सारे लड़के इस पावन शब्द को पढ़िए।